0: गिलास तुम कुफा भी।
1: सूतु सूत सानने रे जगल मंदे मंती तुम मत आकाश करन पिसले तुम सब तुम चला रे नाना का तीन नाना का काम रे ते तीन नाना के आनो ना फिक्री जानी जलू रिस्क के जान कों को रिस्क के जान को ये जन दे जान मंती तुम मत आकाश कर जान ये जन के रिस्क सान पर ना जब फिक्री जान मु उतन मान लेकिन फसल दें दिसाना कुछ दे मना रखा ना वो सेमु सेमु जान ले फिर दिसाना दे फिर मना रखा ना तेंदे ये देमरा रे ना तब फिर तो सोम तांस मिरी जाने सें जब दे दे
2: क्या ना काफी ना सु तो फटा रखो जान ये ले फिर ना काफी ना जान ये मार सुत सा वो ना चार चार ले तीनों रोप ये करने में के ना ब
3: ए सुत सान ले वचने के ते मा दका स्क्यार सोनल ला को ले सुत तुंग अते की ए सेन व तरफे सुत जिस तिस माफ ले चान सुत सुत सान से ले सुत सुत फेन का फिना ति म्यान कर सारे तुंग अते ते वाला स सुजे म सोसो ति मोला ला स ते ने सेन साजा मा पा येरे ना जवे जमा ता ने मा ता ना जरा के से ते तांज ना तंग तुंगा वने
4: फेन का फिना सुत आ ले ले उल्ला ना दे तुंगचा Havana Diego nakane chiliara de Fernane Diego ara kampanirino e te iteta Madagascar de sutun mitso san ie fankerezana hoazireo de mafinaritra ny ataonareo fa tena hoe makafitiko antilosy mamitsika ty izay tena hoe tsy manatsaly ty izany e ie tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: छिमी बोगे ले उलू हमारो तो नहीं लें तो सच्चे माता उसे ले हुए ही फलों से तिवरी से ये तो तुल्यारा दे आकू नहीं मुझे छिमान दे या जब जब मुसारे के जैसे सच्चे कुमाते लो तिवरी स्तु को जैसे नहीं सच्चे केरे थे हम उन उलू मलाक हम जोफ्तो ने निकलो जिंदगी ने फसाई पमारो चाकू हुना ही निकलो आकू अविली मूरा छिले तक ले उलू मुझे के छिमी बोगे सच्चे अंसानो माता उसे ले विरी से Zezan matunga nai tarai ko matelo ni virus tu di vago ga. Wada gaskara ni ninda fa atu yan simon tuliara musare.